0: होलसेल क्लब विच कीमता कट हो रही हैं।
1: पहला नालों में कट।
0: आ वेखो सैन पेलोग्रिनो दिया चुड़िया हुई है किस्मा 6x330 ml सिर्फ $5.99 चे।
1: ये तो होर भी कट है।
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट।
1: ओए तू किथे जा रही है?
0: अपने बिजनेस ले पैसे बचाउन। तो हाडे बिजनेस ले पैसे बचाउना साडा बिजनेस है। इस ले असी कई आइटम दिया कीमता कट कर रहे हैं। कोई फीस नहीं। होर जानकारी ले wholesaleclub.ca वेखो।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

डोगरी रेडियो सुनदा मता मता स्वागत है। ते मैं डोगरन सोल नेहा शर्मा ते आ सैर करा दे हे बागे बहू दी। ए जम्मू शहर दा बड़ा गे अच्छा बड़ा गे सुंदर मनोरम दृश्य आला भाग है जो कि तवी नदी दे कंडे बसेदा है। ते इत्थे बड़े गे शैल शैल बूटे न, हर तरह दे बड़े गे प्रकार दे फुल न जो अखें गी बड़ा सुकून दिंदे न। कन्ने गे कन्ने पहाड़ियों दे बिच इक इत्थे लेक भी है। ते कुल मिलाइए जेड़ा दृश्य है वो ते बड़ा गे अलौकिक दृश्य है। इत्थे तो साखी सकदे हो तीन चीजें दा बड़ा गे सुंदर संगम है, धरती जल ते हरियाली। इन्हें तीनों दा जो प्रकृति ने इत्थे मेल पाए दा वो दसदा के आखने बड़ा गे शैल बड़ा गे सुंदर नज़ारा है। ये जेड़ा बाग है ये एक किले दे अंदर बाहू किले दे अंदर बने दा है। ते जियां कि मैं तुसीं दस्सिया कि बहुत गे इहदी जो नज़ारे ने इहदी बाग दी जो संरचना है वह प्रकृति ने बड़े गे अनोखे तरीके की बनाई दी है। ते मन ते आत्मा दोनों प्रसन्न हो ही जांदे ने। इत्थे इत्थे बहुत अच्छी अच्छी तरह के एक फवारे लगे देन ते पौड़ी नुमा जिहड़ी इहदी संरचना की गई है वह इस दे नज़ारे ही चार चन्न लांदे ने। प्रकृति का ओत प्रोत इत्थे दा माहौल मने गी मुग्ध करी ओड़दा है। ते जदों अस घूमने जाने उत्थे ते उहदे बाद घर आने दा बिल्कुल भी मन नहीं करदा है। ते राती दा इस बाग दा नज़ारा उहदा तां के आखणा। जदों अलग अलग तरह के लाइटिंग इफेक्ट्स पाउंदे ने फवारे पर ते अगे पिछे दे फुल्ले दे उपर जिहड़ी लाइटिंग हुंदी है ते बस दिल करदा अज इत्थे गे रही अजे। इहदी खूबसूरती कन्ने आने वाले जिन्ने भी टूरिस्ट न जिन्ने भी यात्रु या फिर लोकल जम्मू दे लोग न वो बड़े गे आकर्षित हो ही जांदे ने।

0: मीनल जी, तुझे पता कि अच्छे आजकल थिएटरस मुतलक कत बात करा।
1: बिल्कुल रमेश जी, अच्छी आसान जे सानन सामेनन तान गसे थिएटर च पूर पूर जानकारी बातिन।
0: बिल्कुल जानकारी देता सीमन तो बे तिदिम होक जानकारी दपान कुनुशत सतवंधास मंज आये अभिनव भारतीय थिएटर ग्रुपस मंज मोतीलाल किम्मू ड्रामान हिंद अंबार पेश करद। अथ मंज आये के खास ड्रामा निगारन हिंद ड्रामा पेश करद। यमो मंज मशहूर अस उपेंद्रनाथ अश्क, रविंद्रनाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड, बंसी निर्दोष, मोतीलाल किम्मू तो पुष्करनाथ भान सिंह ड्रामा। अमे अलाव आये हरीश चंद्र तारामती, शिव लगन, फिरथुर, मंजिल निक, आकाश पाताल, हीरो मचाम वगैरह करने।
1: अभिनव भारतीय मंज के शख्सियत यमो पन अख मुकाम बनो तिमो मंज अस डॉक्टर रतन लाल शांत, डॉक्टर गौरी शंकर रैना, रविशंकर केमू, सूरज रैना, अशोक कल्ला, नंसी गंजू, हीरा लाल राजदान, रियाज रफाई, चमन लाल हक्कू, त्रिलोकीनाथ वैष्णवी, सोहन लाल कौल वगैरह। किमो मंस रविशंकर केमू, सोहन लाल कौल, डॉक्टर गौरी शंकर रैना, सूरज रैना छे वन कुन नत कुन तरीका आ थिएटर से जुड़े। अमे अलावा छे अमेचर ड्रामा क्लब यमन मंस रंगमंच, संगरमाल, वसंत थिएटर वगैरह शामिल छे। कशिर ड्रामा हस मोल तम वक्त त पोछर ये मोतीलाल केमोहन लुक थिएटर ग्रुप या यथ बांड पथर तनान सत वस्तगी थव। खास तौर पर कशिर भगत थिएटर अकिन गाम ये केमो सबन इन सकदीर हवस जोल गयम तो कोल गयम कांग ही ड्रामा टैगोर हालस मं पेश कर।
0: कशिर ड्रामा मोल अक नव तरीकों पोछर बने अख ड्रामा फेडरेशन तम हर वरी ड्रामा फेस्टिवल करान यमिक ड्रामा कुनुशत शीतस पांशीतस ताम कशीर मंज जिंद रूद। रंगमंचिक वारिया कलाकार युद्ध नाव हन बगैर रोजी ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट तो तम गई मखनलाल सराफ, बिहारी काक, बंसी मट्टू, अशोक जालपुरी, शादीलाल कौल, आशा जारू, भारती जारू वगैरह यमो थिएटर आज तान जिंद थोमुत छो। तो मीनल जी यस ड्रामा तो थिएटरस मतलब जानकारी यस ऐसे पन्न सामिनन तान वातनो।
1: बिल्कुल रमेश जी, तो ऐसे उम्मीद जे तिमन ते ऐसे पसंद आमुत इस के प्रोग्राम तो हमो तिल तिमन इजाजत।
0: बिल्कुल, मगर छुना सला नेरा नेरन भोजन हो अखबत

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। Summit Realty Expert।
2: इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मो

हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी दी तक गाले को जोरे तो मां पया जे चारे पासे तुसी भी आओ 1850 एल्बियन रोड इन रेक्सडेल 4162131165।
1: ओ रॉकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Noble Fresh Foods शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच Noble Fresh Food फेर नंबर ले गया। आटा, दाल, चावल, आले सब्जी ते दूध क्यों, सब मिलेगा Noble Fresh Foods 2945 Sandalwood Parkway East, दूसरी लोकेशन 20 Gillingham Drive in Brampton, फोन 2898010566 Noble Fresh Foods।
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
5: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets Nepal de vichu, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Jan tusi visa services Nepal de vichu, puri family vacation upper jaan di soch ne, jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna waji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 0905678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upar.
8: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
9: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
10: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निज्जर।
11: सो दोस्तों, इन्हां सत्रां नाल वतनों दूर च स्वागत है। हुणे हुणे तातला साहब तुहाडे नाल देश विदेश दीआं खबरां, जोक नोक टोक सारी जानकारी दे के हटे ने। ते हुण मैं सुखी निज्जर ते मेरे नाल किरण हुरी ते मनप्रीत, साडा साथ रहेगा 2 बजे तक, ते तुहाडे नाल करांगे गल्लां बातां। गीत संगीत कोई सुनना चाहुंदे हो, इह जिहड़ा हुणे गीत तुहाडे तक प्ले कीता, किद्दां दा लग्गिआ तुहानूं? मैनूं तां बड़ा वधिआ लग्गिआ। जे वधिआ लग्गिआ होवे तां तुसीं 9057990999 दे उत्ते जिहड़ी कॉल करके सानूं दस सकदे हो। अज दा सारा दा सारा प्रोग्राम जिहड़ा हैगा असीं ओह पेश कर रहे हैं जी नोवल फ्रैश फूड दे सहयोग दे नाल। नोवल फ्रैश फूड तुहानूं पता कि 2 लोकेशनां तुहाडे ऑलरेडी ने, ते तीजी लोकेशन उहनां दी तैयार हो रही है। होलसेल करदे ने दूजे स्टोरां नूं, ते बहुत सस्ता समान तुहानूं वी मिल सकदा। थोड़े जिहे पैसिआं च ट्राली भर के लिआ सकदे हो, जिहड़ा कि दूजे स्टोरां चों तुहानूं थोड़े पैसों के थोड़ा समान मिलता, पर इतने थोड़े पैसों बहुत ज़्यादा समान मिलता। लोकेशन है एक जी Gillingham Drive हाईवे 10 अते बुवेड़ का कॉर्नर, ते दूजी है सैंडलवुड एयरपोर्ट का कॉर्नर। पहुँच सकते हो तो यदा फायदा ले सकते हो। जी किरण जी,
12: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुखी जी, तुहानू होर साडे सारे लिसनर्स नू प्यार प्री सत श्रीकाल जी। एंड उम्मीद करदे हां कि तुसी जित्थों वी सानू सुणदे होवोगे बिल्कुल वधिया होवोगे, कैम होवोगे, एकदम चढ़दी कला दे विच रहो जी। इस चीज दी ही असी जिहड़ी जी आस कर।
13: समोग राय

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड
3: कनेडा विच 75 प्लस लोकेशंस दे नाल पिज़्ज़ा डिपो लेके आया फुल ऑन टेस्ट दा कॉम्बो 50 प्लस टॉपिंग्स दे नाल बनाओ अपना फेवरेट पिज़्ज़ा ट्राई करो स्वीट चिली मैंगो पिज़्ज़ा या शाही पनीर पिज़्ज़ा
4: जूसी अते स्पाइसी विंग्स 25 फ्लेवर्स दे विच अते इंडियन स्टाइल चिकन विंग्स भी ट्राई करो
3: लोडेड फ्राइज नाल बटर चिकन फ्राइज शाही पनीर फ्राइज मतलब हर बाइट विच फुल पैसा वसूल अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या pizzadepo.ca ते ऑर्डर करो
4: ते जे तुसी बिजनेस करना है ते फ्रेंचाइजी एट pizzadepo.ca ते आज ही अप्लाई करो पिज़्ज़ा डिपो स्वाद विच शॉप टॉपिंग्स नॉनस्टॉप
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਰਾ ਆਟੋ ਹੋਮ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੋਰ ਆਟੋ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-241-1309-647-241-1309 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TFSA RRSP ਜਾਂ RESP ਜਾਂ ਸਿਪ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਰਾਈਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-241-1309 647-241-1309
6: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
8: यारों के साथ टशन या फैमिली के साथ करना हो जशन ढाबा ऑन द फॉल्स आए टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा
9: दिल्ली वाला बटर चिकन रोगन जोश सोया चाम बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स फ्री पार्किंग विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स कॉल 905-358-0864
8: 905-358-0864 Dhaba on the Falls
10: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji. 647-822-9607 647-822-9607
11: ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹਨ ਪੋਸਟਰਸ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਬੈਨਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜ਼ੋਨ ਸਾਈਨਰਾਮਾ 1625 ਸਟੀਲਸ ਐਵਨਿਊ ਈਸਟ ਸਟੀਲਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਟਡ ਹਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9054585956 9054589956

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 647-822-9607 647-822-9607

0: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी दी तक गाले कुजोरे तो मां भैया जे चारे पासे तुसी भी आओ 1850 एल्बियन रोड इन रेक्सडेल 4162131165
1: एक लाइफ है जिससे लव है
2: ये कहते मुझसे सब है
3: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल इतनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 चो।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू। 32, 55, 80
3: ते 98
2: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
3: ओ काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने,
4: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते। 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

0: Canada there study visa, express entry, Canadian express entry, spousal file, parents PR, super visa, nanny, work permit, farmer, investor, या self-employed दी file, गल की, immigration दी हर problem दा solution लैन लई, community दे जाने पहचाने अते तजर्बेकार immigration consultant, Gary Virk नु मिलो।
1: कोई case refuse हो गया या appeal ते चला गया, होवे immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था, CIC immigration, हुने ही call करो, 456-6161.
2: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
3: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी दे कड़े, चांदी दे चेन, चांदी दे ब्रेसलेट,
2: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
3: घोर एंड अवनीजर दे इंटरसेक्शन ते गुरुद्वारे बाय प्लाज दे विच सिल्वर हट।
4: 647-339-3521
5: जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले।
6: लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 905-678-1200
7: रात हमें छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो
8: मैं चलिया स्काईडम ऑटो ते बॉडी सेंटर जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है जो करनगे मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच
7: भई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने
8: कॉल करो 905-874-9878
9: बंबा गया मैं जिते जावा मुंडे कहंदे बंबा गया
10: देखो जी करता है अपना नंबर वन पर मेरा दिल करता है अपना कर सारे तो सोना हो भी
11: बस इन्हीं गल हो कार

हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और